0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, इसराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2025 में गाजा में संघर्ष विराम लागू होने के बाद हिंसा के स्तर में कमी आई है, लेकिन फिलिस्तीनियों की मौतें और बुनियादी ढांचे का ध्वंस अब भी हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने कहा है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों गाजा पट्टी और पश्चिमी तट व लेबनान में इसराइल के सैन्य हमलों के कारण आम लोग लगातार और बढ़ती कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हिंसक टकराव, विस्थापन और जारी सैन्य अभियानों ने मानवीय जरूरतों को गहरा कर दिया है और पहले से ही सीमित सहायता प्रयासों पर दबाव बढ़ा दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान और पूजा यादव।
3: संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने बताया है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों गाजा पट्टी और पश्चिमी तट व लेबनान में जारी इसराइल के सैन्य हमलों के कारण आम लोग लगातार और बढ़ती कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हिंसक टकराव, विस्थापन और जारी सैन्य अभियानों ने मानवीय जरूरतों को गहरा कर दिया है और पहले से ही सीमित सहायता प्रयासों पर दबाव और बढ़ा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुमान के अनुसार गाजा में 43,000 से अधिक लोग इस रूप में घायल हुए हैं कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, जबकि पुनर्वास सेवाएं अपनी क्षमता से अधिक दबाव का सामना कर रही हैं। गाजा में अत्यंत आवश्यक सहायता सामग्री बहुत कम मात्रा में पहुंच रही है। आम लोगों की पीड़ा केवल गाजा तक सीमित नहीं है। पश्चिमी तट के जॉर्डन घाटी इलाके में यहूदी बाशिंदों द्वारा की जा रही हिंसा में हताहतों की संख्या और संपत्ति के नुकसान वाली घटनाओं में वर्ष 2020 के बाद से औसतन मासिक 14 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
4: उधर लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट और मानवीय कोऑर्डिनेटर इमरान रजा ने बताया कि 17 अप्रैल से शुरू हुए युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में आम लोग इसराइल के हवाई हमलों से लगातार विनाशकारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। इसराइल के हवाई हमले और विध्वंस हर दिन जारी हैं, जिससे महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के साथ साथ विस्थापित परिवारों में लोग हताहत हो रहे हैं। इमरान रजा ने कहा कि लेबनान में लोगों ने नुकसान, सदमा और जीवित रहने की दिल दहला देने वाली कहानियां बयां की हैं। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत आम लोगों की हर समय रक्षा की जानी चाहिए, जिनमें मानवीय कार्यकर्ता, चिकित्सा दल और बचाव दल भी शामिल हैं। साथ ही आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।
2: राजनैतिक और शांति निर्माण मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी ने सुरक्षा परिषद को आगाह किया है कि यूक्रेन युद्ध अपने 5वें वर्ष में है और हर दिन बीतने के साथ यह पहले से कहीं अधिक जानलेवा होता जा रहा है। यूएन कार्यालय में निदेशक कायोको गोटोह ने अपने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को बताया कि पिछले एक सप्ताह में फरवरी 2022 में रूसी महासंघ के पूर्ण स्तर पर आक्रमण के बाद से यूक्रेन में की गई अब तक की सबसे बड़ी, सबसे विशाल बमबारी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पूजा यादव।
4: यूक्रेन में रूसी सैन्य बलों ने बीते 48 घंटों के दौरान बड़े पैमाने पर ड्रोन व मिसाइल हमले किए हैं, जिससे वहां जान माल की भीषण हानि हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने इस सिलसिलेवार हमलों के बाद कहा कि आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए और उनकी सदैव रक्षा की जानी चाहिए। खबरों के अनुसार रूस ने यूक्रेन पर 800 ड्रोन व 56 मिसाइलों से हमले किए, जो कि 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध के दौरान अब तक के सबसे गहन व लंबे समय तक चलने वाले हमलों में है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इन हमलों की वजह से अति आवश्यक सेवाओं में व्यवधान आया है। राजधानी कीव के कुछ इलाकों में जल आपूर्ति ठप हो गई है और यातायात सीमित है।
2: कहने को तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि प्लास्टिक का प्रयोग एक बार नहीं करके उसे पुनः प्रयोग किया जाए, यानी प्लास्टिक उत्पादों को बार बार प्रयोग किया जाए, मगर पुनः प्रयोग किए गए प्लास्टिक के खाद्य पैकेजिंग में बढ़ते इस्तेमाल के साथ खाद्य सुरक्षा से जुड़े जोखिम भी बढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की नई रिपोर्ट के अनुसार पुनः प्रयोग यानी रिसाइकलिंग प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल वैसे तो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे प्लास्टिक कूड़ा कचरा कम होता है, मगर खाद्य वस्तुओं के संपर्क में आने वाला प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
4: संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि पुनः प्रयोग प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल वैसे तो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे प्लास्टिक कूड़ा कचरा कम होता है, मगर वस्तुओं के संपर्क में आने वाला प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। वर्तमान में वैश्विक खाद्य पैकेजिंग बाजार लगातार बढ़ रहा है। साल 2024 में इसकी अनुमानित कीमत $505 अरब से अधिक थी और 2030 तक ये $815 अरब से ऊपर पहुंचने का अनुमान है। इसके मद्देनजर रिपोर्ट में वैश्विक खाद्य सुरक्षा दिशा निर्देशों की जरूरत पर बल दिया गया है। रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष यह है कि रिसाइकल किया गया प्लास्टिक और खाद्य वस्तुओं के संपर्क में आने वाली अन्य वैकल्पिक सामग्री पर्यावरण के लिए लाभकारी हो सकती है, लेकिन इनके साथ खाद्य सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी उठते हैं। रिपोर्ट में कई सिफारिशें और आगे की राह भी सुझाई गई है, जैसे रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को अच्छी तरह नियंत्रित करना जरूरी है जिसमें रासायनिक प्रदूषकों की सफाई और उन्हें हटाना शामिल हो।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया भर में निकोटीन पाउच उत्पादों के तेजी से हो रहे प्रसार और इसके इस्तेमाल के लिए किशोरों और युवाओं को लुभाए जाने वाले आक्रामक प्रचार पर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। संगठन ने चिंता जताई है कि अनेक देशों में इस पर नियंत्रण के लिए नियामक व्यवस्था सीमित या नदारद है, जिससे युवाओं में इसकी लत पड़ने और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने का खतरा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
5: निकोटीन तंबाकू के पौधे में पाया जाने वाला एक रसायन है जिसके इस्तेमाल की लत आसानी से पड़ जाती है। निकोटीन के छोटे थैलीनुमा पैकेट या पाउच को मसूड़ों और होठ के बीच रखा जाता है और फिर इसका स्वाद धीरे धीरे मुंह में घुलता रहता है। इन पाउच में निकोटीन के अलावा कुछ फ्लेवर, मिठास प्रदान करने वाले तत्व और अन्य सामग्री मौजूद होती हैं और इसकी बिक्री साल दर साल बढ़ती जा रही है। UN स्वास्थ्य एजेंसी ने अपनी एक नई रिपोर्ट में चिंता जताई है कि ये पाउच तैयार करने वाली कंपनियां निकोटीन के इस्तेमाल को युवाओं में सामान्य बनाने के लिए सोशल मीडिया व विज्ञापनों के जरिए आक्रामक प्रचार कर रही हैं, आकर्षक पैकेजिंग का सहारा ले रही हैं और लुभावने मगर भ्रामक संदेश भी अपना रही हैं। जैसे जैसे दुनिया भर में इसकी बिक्री बढ़ रही है, इनके लिए नियामन व्यवस्था लड़खड़ा रही है। नियम कमजोर है या फिर अनेक देशों में मौजूद ही नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि निकोटीन का इस्तेमाल बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए विशेष रूप से हानिकारक है। किशोरावस्था में निकोटीन की चपेट में आने से एकाग्रता, सीखने सिखाने की क्षमता और मस्तिष्क के विकास पर असर होता है। निकोटीन का इस्तेमाल हृदय और रक्त वाहिकाओं के रोग के जोखिम से जुड़ा हुआ भी पाया गया है। इसके मद्देनजर UN स्वास्थ्य एजेंसी ने आग्रह किया है कि तंबाकू और निकोटीन के सभी उत्पादों को नियमों के दायरे में लाना होगा।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो 14वें ने शुक्रवार को मानवीय आवाजों और चेहरों का संरक्षण शीर्षक से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित कर कहा कि डिजिटल संचार माध्यम जगत से उत्पन्न नवीन चुनौतियों के समक्ष भविष्य के लिए उनकी चिंताएं तर्कसंगत हैं। संत पापा लियो ने कहा कि संप्रेषण और संचार दिवस की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित उक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों का वेटिकन में स्वागत करते वे अत्यंत हर्षित थे। उन्होंने कहा, डिजिटल कम्युनिकेशन में माहिर विशेषज्ञ होने के नाते मानव जाति के भविष्य के लिए आपकी चिंता आपको मीडिया और डिजिटल साक्षरता पर सोच विचार हेतु रोम लाई। इस पहल में हिस्सा लेकर आप सभी टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास के इस समय में मानवता के भविष्य की दिशा में योगदान देने हेतु अपनी अपनी प्रवीणता को लाए हैं, जो कलीसिया के मिशन के लिए भी खास तौर पर एक जरूरी सवाल है। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि कलीसिया का प्राथमिक मिशन प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति और इसके लिए सुसमाचार प्रचार है, ताकि जैसा कि संत योहन रचित सुसमाचार में लिखा है, वे तुझे सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। संत पापा ने कहा कि इसीलिए हर किसी की यह इच्छा कि वह मुक्ति पाए और सत्य को जाने न सिर्फ हमारे फैसलों और कामों को प्रभावित करे, बल्कि मीडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और दिशा को भी प्रभावित करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये अस्त्र मानवता की सच्ची सेवा में लगाए जाएं। संत पापा ने कहा कि यह दुख की बात है कि टेक्नोलॉजी को बिना रोक टोक बढ़ावा दिया जा रहा है और मानव सम्मान की कीमत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब टेक्नोलॉजी मानवीय रिश्तों की हमारी जरूरत का फायदा उठाती है, तो इससे यह पता चलता है कि हम सच में इंसान होने के मतलब को भूल रहे हैं। इसीलिए यह और भी जरूरी है कि हम इंसानियत के असली मतलब और उसकी महानता को समझें, जैसा कि ईश्वर ने चाहा था। इसी मायने में अभी हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, वह टेक्नोलॉजिकल नहीं बल्कि मानव विज्ञान संबंधी चुनौती है, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में प्रकाशित होने वाला मेरा विश्व पत्र इस चुनौती का जवाब देने में मदद करेगा। संत पापा ने कहा कि इसी पृष्ठभूमि में कलीसिया अपने शैक्षणिक निकाय में मीडिया, सूचना और प्रसारण तथा AI साक्षरता की योजना तथा उसके लागू किए जाने और उसके सदुपयोग के प्रति चेतना जागृत करने को नितांत आवश्यक मानती है, ताकि समाज को रचनात्मक योगदान दिया जा सके। रोम स्थित परम धर्म पीठीय उर्बानियाना विश्वविद्यालय में गुरुवार को डिजिटल टेक्नोलॉजी, शिक्षा और संस्कृति जगत के विद्वानों तथा पत्रकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मीडिया और समाज पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावों का विश्लेषण किया गया। मानवीय चेहरों और आवाजों को संरक्षित करना शीर्षक से आयोजित उक्त सम्मेलन में संप्रेषण और संचार माध्यम दिवस पर प्रकाशित संत पापा लियो 14वें के संदेश में इंगित किए गए लाभ पर नैतिक गारंटी की जिम्मेदारी, सहयोग और शिक्षा विषयों पर चिंतन किया गया। इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि इन विषयों को व्यावहारिकता के साथ लागू किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टेक्नोलॉजी मानव अधीनता के बजाय मानवाधिकार क्षेत्र का साधन बनी रहे। संप्रेषण और संचार माध्यम संबंधी विश्व दिवस पर संत पापा लियो 14वें के संदेश से प्रेरित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन परम धर्म पीठीय संप्रेषण और संचार माध्यम विभाग तथा परम धर्म पीठीय शिक्षा और संस्कृति परिषद द्वारा संत पापा लियो के प्रथम विश्व पत्र मैनिफिका उमानितास के प्रकाशित होने के कुछ ही दिन पूर्व किया गया था। इसका मूल उद्देश्य व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों पर AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावों का विश्लेषण करना था। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए परम धर्म पीठीय संप्रेषण और संचार माध्यम विभाग के पाओलो रूफिनी ने संरक्षण का अर्थ समझाते हुए कहा, संरक्षण एक ऐसा शब्द है जो हमें चुनौती देता है। इसका अर्थ है प्रेम और जिम्मेदारी के साथ किसी की देखभाल करना। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा खतरा इस बात को बिना सोचे समझे मान लेने में है कि ज्ञान अब हमारा नहीं रहा और जो कुछ हमने खुद बनाया है, एल्गोरिदम, प्लेटफॉर्म और ऑटोमेटेड सिस्टम, उसे हमारे लिए सोचने, हमारी जिंदगी और यहाँ तक कि दूसरों से बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह से प्रोग्राम करने का काम सौंपा जा सकता है।
और इसी बीच परम धर्म पीठ शिक्षा और संस्कृति परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल होसे तोलेंटिनो दे मेंडोंसा ने कहा कि ऐसे समय में जब वास्तविकता और अनुकरण के बीच सीमाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं, मानव व्यक्ति को कभी भी एक स्टैटिस्टिक, एक प्रोफाइल या एक एल्गोरिदम तक सीमित नहीं किया जा सकता। मानव हमेशा से कुछ और है, वह एक रहस्य है, एक पुकार है। रोम स्थित वैटिकन रेडियो मुख्यालय में गुरुवार को यूरोपियन संघ के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलनों के संघ कॉमेक के आयोग की बैठक संपन्न हुई, जिसमें संत पापा लियो 14वें से मुलाकात और 2027 में यूरोप पर पुनर्विचार शीर्षक से एक नए संकलन के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा गया। संत पापा से मुलाकात के विषय में कॉमेक के अध्यक्ष धर्माधीक्ष मरियानो क्रोशाता ने बताया कि संत पापा लियो 14वें के साथ गुरुवार प्रातः संपन्न मुलाकात सौहार्द, प्रत्यक्ष और उदार रही। उन्होंने कहा कि वस्तुतः हमारे कार्य और संत पापा अपनी धर्म शिक्षा, अपनी स्थिति और अपनी पहलों के माध्यम से जो सिखाते हैं और गवाही देते हैं, उसके बीच एक मजबूत तालमेल था। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ शांति की एक योजना के तौर पर बना था और शांति इसकी जड़ों और इसकी पहचान में है। आज तो इसे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के साथ साथ बहुपक्षीयवाद को बढ़ावा देना चाहिए, जैसा कि संत पापा ने स्पष्टतः स्मरण दिलाया है। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि ध्रुवीकरण से चिन्हित दुनिया में यूरोपीय संघ लोक लुभावनवाद के परिणाम स्वरूप एकता के अभाव में कमजोर पड़ गया है। धर्माधीश क्रोशाती ने कहा कि सुसमाचार के शब्द तथा कलीसिया की धर्म शिक्षा को लागू किया जाना आज हमारे समक्ष एक चुनौती है, जिसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम भय, सुविधा या इससे भी बुरा किसी भी संभावित राजनीतिक पसंद की वजह से पीछे नहीं हट सकते। और यूरोपीय धर्माधीक्षीय सम्मेलनों के संघ के उपाध्यक्ष कोपेनहागन के धर्माधीश जेस्लाव कोजोन ने आप्रवासियों की स्थिति पर ध्यान आकर्षित कराया और दुख जताया कि दुर्भाग्यवश आप्रवासियों को प्रायः बलि का बकरा और समाज का दुश्मन बना दिया जाता है। उन्होंने स्वीकार किया कि आप्रवास का मुद्दा कई दशकों से चला आ रहा है, यह कोई नई बात नहीं है, किंतु उन्होंने कहा नई बात यह कि आज यूरोपीय राजनीतिज्ञ लोक लुभावनवाद का इस्तेमाल कर इसे कई समाजों के लिए एक कथित खतरे में बदल रहे हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओ, इसराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2025 में गाजा में संघर्ष विराम लागू होने के बाद हिंसा के स्तर में कमी आई है, लेकिन फिलिस्तीनियों की मौतें और बुनियादी ढांचे का ध्वंस अब भी हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने कहा है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों गाजा पट्टी और पश्चिमी तट व लेबनान में इसराइल के सैन्य हमलों के कारण आम लोग लगातार और बढ़ती कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हिंसक टकराव, विस्थापन और जारी सैन्य अभियानों ने मानवीय जरूरतों को गहरा कर दिया है और पहले से ही सीमित सहायता प्रयासों पर दबाव बढ़ा दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान और पूजा यादव।
3: संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने बताया है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों गाजा पट्टी और पश्चिमी तट व लेबनान में जारी इसराइल के सैन्य हमलों के कारण आम लोग लगातार और बढ़ती कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हिंसक टकराव, विस्थापन और जारी सैन्य अभियानों ने मानवीय जरूरतों को गहरा कर दिया है और पहले से ही सीमित सहायता प्रयासों पर दबाव और बढ़ा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुमान के अनुसार गाजा में 43,000 से अधिक लोग इस रूप में घायल हुए हैं कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, जबकि पुनर्वास सेवाएं अपनी क्षमता से अधिक दबाव का सामना कर रही हैं। गाजा में अत्यंत आवश्यक सहायता सामग्री बहुत कम मात्रा में पहुंच रही है। आम लोगों की पीड़ा केवल गाजा तक सीमित नहीं है। पश्चिमी तट के जॉर्डन घाटी इलाके में यहूदी बाशिंदों द्वारा की जा रही हिंसा में हताहतों की संख्या और संपत्ति के नुकसान वाली घटनाओं में वर्ष 2020 के बाद से औसतन मासिक 14 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
4: उधर लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट और मानवीय कोऑर्डिनेटर इमरान रजा ने बताया कि 17 अप्रैल से शुरू हुए युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में आम लोग इसराइल के हवाई हमलों से लगातार विनाशकारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। इसराइल के हवाई हमले और विध्वंस हर दिन जारी हैं, जिससे महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के साथ साथ विस्थापित परिवारों में लोग हताहत हो रहे हैं। इमरान रजा ने कहा कि लेबनान में लोगों ने नुकसान, सदमा और जीवित रहने की दिल दहला देने वाली कहानियां बयां की हैं। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत आम लोगों की हर समय रक्षा की जानी चाहिए, जिनमें मानवीय कार्यकर्ता, चिकित्सा दल और बचाव दल भी शामिल हैं। साथ ही आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।
2: राजनैतिक और शांति निर्माण मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी ने सुरक्षा परिषद को आगाह किया है कि यूक्रेन युद्ध अपने 5वें वर्ष में है और हर दिन बीतने के साथ यह पहले से कहीं अधिक जानलेवा होता जा रहा है। यूएन कार्यालय में निदेशक कायोको गोटोह ने अपने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को बताया कि पिछले एक सप्ताह में फरवरी 2022 में रूसी महासंघ के पूर्ण स्तर पर आक्रमण के बाद से यूक्रेन में की गई अब तक की सबसे बड़ी, सबसे विशाल बमबारी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पूजा यादव।
4: यूक्रेन में रूसी सैन्य बलों ने बीते 48 घंटों के दौरान बड़े पैमाने पर ड्रोन व मिसाइल हमले किए हैं, जिससे वहां जान माल की भीषण हानि हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने इस सिलसिलेवार हमलों के बाद कहा कि आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए और उनकी सदैव रक्षा की जानी चाहिए। खबरों के अनुसार रूस ने यूक्रेन पर 800 ड्रोन व 56 मिसाइलों से हमले किए, जो कि 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध के दौरान अब तक के सबसे गहन व लंबे समय तक चलने वाले हमलों में है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इन हमलों की वजह से अति आवश्यक सेवाओं में व्यवधान आया है। राजधानी कीव के कुछ इलाकों में जल आपूर्ति ठप हो गई है और यातायात सीमित है।
2: कहने को तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि प्लास्टिक का प्रयोग एक बार नहीं करके उसे पुनः प्रयोग किया जाए, यानी प्लास्टिक उत्पादों को बार बार प्रयोग किया जाए, मगर पुनः प्रयोग किए गए प्लास्टिक के खाद्य पैकेजिंग में बढ़ते इस्तेमाल के साथ खाद्य सुरक्षा से जुड़े जोखिम भी बढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की नई रिपोर्ट के अनुसार पुनः प्रयोग यानी रिसाइकलिंग प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल वैसे तो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे प्लास्टिक कूड़ा कचरा कम होता है, मगर खाद्य वस्तुओं के संपर्क में आने वाला प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
4: संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि पुनः प्रयोग प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल वैसे तो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे प्लास्टिक कूड़ा कचरा कम होता है, मगर वस्तुओं के संपर्क में आने वाला प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। वर्तमान में वैश्विक खाद्य पैकेजिंग बाजार लगातार बढ़ रहा है। साल 2024 में इसकी अनुमानित कीमत $505 अरब से अधिक थी और 2030 तक ये $815 अरब से ऊपर पहुंचने का अनुमान है। इसके मद्देनजर रिपोर्ट में वैश्विक खाद्य सुरक्षा दिशा निर्देशों की जरूरत पर बल दिया गया है। रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष यह है कि रिसाइकल किया गया प्लास्टिक और खाद्य वस्तुओं के संपर्क में आने वाली अन्य वैकल्पिक सामग्री पर्यावरण के लिए लाभकारी हो सकती है, लेकिन इनके साथ खाद्य सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी उठते हैं। रिपोर्ट में कई सिफारिशें और आगे की राह भी सुझाई गई है, जैसे रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को अच्छी तरह नियंत्रित करना जरूरी है, जिसमें रासायनिक प्रदूषकों की सफाई और उन्हें हटाना शामिल हो।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया भर में निकोटीन पाउच उत्पादों के तेजी से हो रहे प्रसार और इसके इस्तेमाल के लिए किशोरों और युवाओं को लुभाए जाने वाले आक्रामक प्रचार पर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। संगठन ने चिंता जताई है कि अनेक देशों में इस पर नियंत्रण के लिए नियामक व्यवस्था सीमित या नदारद है, जिससे युवाओं में इसकी लत पड़ने और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने का खतरा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
5: निकोटीन तंबाकू के पौधे में पाया जाने वाला एक रसायन है, जिसके इस्तेमाल की लत आसानी से पड़ जाती है। निकोटीन के छोटे थैलीनुमा पैकेट या पाउच को मसूड़ों और होठ के बीच रखा जाता है और फिर इसका स्वाद धीरे धीरे मुंह में घुलता रहता है। इन पाउच में निकोटीन के अलावा कुछ फ्लेवर, मिठास प्रदान करने वाले तत्व और अन्य सामग्री मौजूद होती हैं और इसकी बिक्री साल दर साल बढ़ती जा रही है। UN स्वास्थ्य एजेंसी ने अपनी एक नई रिपोर्ट में चिंता जताई है कि ये पाउच तैयार करने वाली कंपनियां निकोटीन के इस्तेमाल को युवाओं में सामान्य बनाने के लिए सोशल मीडिया व विज्ञापनों के जरिए आक्रामक प्रचार कर रही हैं, आकर्षक पैकेजिंग का सहारा ले रही हैं और लुभावने मगर भ्रामक संदेश भी अपना रही हैं। जैसे जैसे दुनिया भर में इसकी बिक्री बढ़ रही है, इनके लिए नियामन व्यवस्था लड़खड़ा रही है। नियम कमजोर हैं या फिर अनेक देशों में मौजूद ही नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि निकोटीन का इस्तेमाल बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए विशेष रूप से हानिकारक है। किशोरावस्था में निकोटीन की चपेट में आने से एकाग्रता, सीखने सिखाने की क्षमता और मस्तिष्क के विकास पर असर होता है। निकोटीन का इस्तेमाल हृदय और रक्त वाहिकाओं के रोग के जोखिम से जुड़ा हुआ भी पाया गया है। इसके मद्देनजर UN स्वास्थ्य एजेंसी ने आग्रह किया है कि तंबाकू और निकोटीन के सभी उत्पादों को नियमों के दायरे में लाना होगा।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो 14वें ने शुक्रवार को मानवीय आवाजों और चेहरों का संरक्षण शीर्षक से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित कर कहा कि डिजिटल संचार माध्यम जगत से उत्पन्न नवीन चुनौतियों के समक्ष भविष्य के लिए उनकी चिंताएं तर्कसंगत हैं। संत पापा लियो ने कहा कि संप्रेषण और संचार दिवस की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित उक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों का वेटिकन में स्वागत करते वे अत्यंत हर्षित थे। उन्होंने कहा, डिजिटल कम्युनिकेशन में माहिर विशेषज्ञ होने के नाते मानव जाति के भविष्य के लिए आपकी चिंता आपको मीडिया और डिजिटल साक्षरता पर सोच विचार हेतु रोम लाई। इस पहल में हिस्सा लेकर आप सभी टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास के इस समय में मानवता के भविष्य की दिशा में योगदान देने हेतु अपनी अपनी प्रवीणता को लाए हैं, जो कलीसिया के मिशन के लिए भी खास तौर पर एक जरूरी सवाल है। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि कलीसिया का प्राथमिक मिशन प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति और इसके लिए सुसमाचार प्रचार है, ताकि जैसा कि संत योहन रचित सुसमाचार में लिखा है, वे तुझे सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। संत पापा ने कहा कि इसीलिए हर किसी की यह इच्छा कि वह मुक्ति पाए और सत्य को जाने न सिर्फ हमारे फैसलों और कामों को प्रभावित करे, बल्कि मीडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और दिशा को भी प्रभावित करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये अस्त्र मानवता की सच्ची सेवा में लगाए जाए। संत पापा ने कहा कि यह दुख की बात है कि टेक्नोलॉजी को बिना रोक टोक बढ़ावा दिया जा रहा है और मानव सम्मान की कीमत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब टेक्नोलॉजी मानवीय रिश्तों की हमारी जरूरत का फायदा उठाती है, तो इससे यह पता चलता है कि हम सच में इंसान होने के मतलब को भूल रहे हैं। इसीलिए यह और भी जरूरी है कि हम इंसानियत के असली मतलब और उसकी महानता को समझें, जैसा कि ईश्वर ने चाहा था। इसी मायने में अभी हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, वह टेक्नोलॉजिकल नहीं बल्कि मानव विज्ञान संबंधी चुनौती है, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में प्रकाशित होने वाला मेरा विश्व पत्र इस चुनौती का जवाब देने में मदद करेगा। संत पापा ने कहा कि इसी पृष्ठभूमि में कलीसिया अपने शैक्षणिक निकाय में मीडिया, सूचना और प्रसारण तथा AI साक्षरता की योजना तथा उसके लागू किए जाने और उसके सदुपयोग के प्रति चेतना जागृत करने को नितांत आवश्यक मानती है, ताकि समाज को रचनात्मक योगदान दिया जा सके। रोम स्थित परम धर्म पीठीय उर्बानियाना विश्वविद्यालय में गुरुवार को डिजिटल टेक्नोलॉजी, शिक्षा और संस्कृति जगत के विद्वानों तथा पत्रकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मीडिया और समाज पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावों का विश्लेषण किया गया। मानवीय चेहरों और आवाजों को संरक्षित करना शीर्षक से आयोजित उक्त सम्मेलन में संप्रेषण और संचार माध्यम दिवस पर प्रकाशित संत पापा लियो 14वें के संदेश में इंगित किए गए लाभ पर नैतिक गारंटी की जिम्मेदारी, सहयोग और शिक्षा विषयों पर चिंतन किया गया। इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि इन विषयों को व्यावहारिकता के साथ लागू किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टेक्नोलॉजी मानव अधीनता के बजाय मानवाधिकार क्षेत्र का साधन बनी रहे। संप्रेषण और संचार माध्यम संबंधी विश्व दिवस पर संत पापा लियो 14वें के संदेश से प्रेरित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन परम धर्म पीठीय संप्रेषण और संचार माध्यम विभाग तथा परम धर्म पीठीय शिक्षा और संस्कृति परिषद द्वारा संत पापा लियो के प्रथम विश्व पत्र मैनिफिका उमानितास के प्रकाशित होने के कुछ ही दिन पूर्व किया गया था। इसका मूल उद्देश्य व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों पर AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावों का विश्लेषण करना था। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए परम धर्म पीठीय संप्रेषण और संचार माध्यम विभाग के पाओलो रूफिनी ने संरक्षण का अर्थ समझाते हुए कहा, संरक्षण एक ऐसा शब्द है जो हमें चुनौती देता है। इसका अर्थ है प्रेम और जिम्मेदारी के साथ किसी की देखभाल करना। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा खतरा इस बात को बिना सोचे समझे मान लेने में है कि ज्ञान अब हमारा नहीं रहा और जो कुछ हमने खुद बनाया है, एल्गोरिदम, प्लेटफॉर्म और ऑटोमेटेड सिस्टम, उसे हमारे लिए सोचने, हमारी जिंदगी और यहां तक कि दूसरों से बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह से प्रोग्राम करने का काम सौंपा जा सकता है।
और इसी बीच परम धर्म पीठे शिक्षा और संस्कृति परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल होसे तोलेंटिनो दे मेंडोंसा ने कहा कि ऐसे समय में जब वास्तविकता और अनुकरण के बीच सीमाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं, मानव व्यक्ति को कभी भी एक स्टैटिस्टिक, एक प्रोफाइल या एक एल्गोरिदम तक सीमित नहीं किया जा सकता। मानव हमेशा से कुछ और है, वह एक रहस्य है, एक पुकार है। रोम स्थित वैटिकन रेडियो मुख्यालय में गुरुवार को यूरोपियन संघ के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलनों के संघ कॉमेक के आयोग की बैठक संपन्न हुई, जिसमें संत पापा लियो 14वें से मुलाकात और 2027 में यूरोप पर पुनर्विचार शीर्षक से एक नए संकलन के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा गया। संत पापा से मुलाकात के विषय में कॉमेक के अध्यक्ष धर्माधीक्ष मरियानो क्रोशाता ने बताया कि संत पापा लियो 14वें के साथ गुरुवार प्रातः संपन्न मुलाकात सौहार्द, प्रत्यक्ष और उदार रही। उन्होंने कहा कि वस्तुतः हमारे कार्य और संत पापा अपनी धर्म शिक्षा, अपनी स्थिति और अपनी पहलों के माध्यम से जो सिखाते हैं और गवाही देते हैं, उसके बीच एक मजबूत तालमेल था। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ शांति की एक योजना के तौर पर बना था और शांति इसकी जड़ों और इसकी पहचान में है, अस्तु इसे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के साथ साथ बहुपक्षीयवाद को बढ़ावा देना चाहिए, जैसा कि संत पापा ने स्पष्टतः स्मरण दिलाया है। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि ध्रुवीकरण से चिन्हित दुनिया में यूरोपीय संघ लोक लुभावनवाद के परिणाम स्वरूप एकता के अभाव में कमजोर पड़ गया है। धर्माधीश क्रोशाती ने कहा कि सुसमाचार के शब्द तथा कलीसिया की धर्म शिक्षा को लागू किया जाना आज हमारे समक्ष एक चुनौती है, जिसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम भय, सुविधा या इससे भी बुरा किसी भी संभावित राजनीतिक पसंद की वजह से पीछे नहीं हट सकते। और यूरोपीय धर्माधीक्षीय सम्मेलनों के संघ के उपाध्यक्ष कोपेनहागन के धर्माध्यक्ष जेस्लाव कोजोन ने आप्रवासियों की स्थिति पर ध्यान आकर्षित कराया और दुख जताया कि दुर्भाग्यवश आप्रवासियों को प्रायः बलि का बकरा और समाज का दुश्मन बना दिया जाता है। उन्होंने स्वीकार किया कि आप्रवास का मुद्दा कई दशकों से चला आ रहा है, यह कोई नई बात नहीं है, किंतु उन्होंने कहा नई बात यह कि आज यूरोपीय राजनीतिज्ञ लोक लुभावनवाद का इस्तेमाल कर इसे कई समाजों के लिए एक कथित खतरे में बदल रहे हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र

0: चिड़ी टॉम और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया,

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित

0: प्रार्थना कर।
1: अति पवित्र माला की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: शांति की महारानी
0: हमारे लिए प्रार्थना कर।
1: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
0: प्रभु हमें क्षमा कर।
1: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
0: प्रभु हमारी सुन।
1: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
0: हम पर दया कर।
1: हम प्रार्थना करें।
0: हे प्रभु ईश्वर।

0: मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, हम मानव अपने दैनिक जीवन में ईश्वरीय वरदानों की चाह रखते हैं। इसके लिए हम बड़ी आस्था से ईश्वर के मंदिर, उनके निवास स्थल में उनकी पूजा आराधना करने को जाते हैं, जिससे हमारे हृदय की मनोकामनाएं पूरी हों। इतना ही नहीं, ईश्वरीय आशीषों को पाने के लिए दान पुण्य के कार्य भी हम संपन्न करते हैं, और देखा जाए तो ईश्वर पर हमारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाती है। वे हमें अपने विश्वासी भक्तों को हमारे नेक और भले कार्यों के कारण निश्चित ही अपनी आशीषों और वरदानों से विभूषित करते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम ईश्वरीय वरदानों को किस रूप में ग्रहण करने को तैयार रहते हैं। श्रोताओं, आज माता कलिसिया पेंतेकोस्त का महापर्व मनाती है, जहां हम पिता ईश्वर के द्वारा पुत्र में पवित्र आत्मा को दुनिया में शिष्यों के बीच भेजे जाने की चर्चा सुनते हैं। पेंतेकोस्त महापर्व आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठ हमारे लिए शिष्यों पर पवित्र आत्मा के उतरने और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का जिक्र करते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए स्वयं से पूछें, क्या हमने अपने ऊपर ईश्वर के आत्मा को उतरने का अनुभव किया है? प्रभु का आत्मा हमारे लिए किस रूप में आता है? पवित्र आत्मा हमें विभिन्न तरह के वरदानों से विभूषित करते हैं, अतः हमने उनकी किस कृपा को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप में अनुभव किया है?
1: उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले, और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में ईश्वर की दिव्य शांति से भर दे, जिसे यीशु हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजते हुए प्रदान करते हैं, जिससे हम उसी शांति को उनके बीच बांट सकें जो अपने जीवन में अशांत और विभिन्न रूपों में बिखरे होने का अनुभव करते हैं। श्रोताओं, प्रेरित चरित से लिया गया आज का पहला पाठ शिष्यों के लिए हुए एक अद्भुत चमत्कार का जिक्र करता है। यह हमारे लिए पेंतेकोस्त, उनके ऊपर पवित्र आत्मा के उतरने की चर्चा करता है। अपने स्वर्गारोहण के पूर्व यीशु ने अपने शिष्यों को यरूशलेम से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया था, तब तक जब तक उनमें पवित्र आत्मा ना उतरे और उनके द्वारा उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त ना हो। यीशु अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं और अपने शिष्यों के लिए पिता की ओर से पवित्र आत्मा को भेजते हैं, जिसकी प्राप्ति हेतु शिष्यगण अंतिम व्यारी की कोठरी में जमा होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। अचानक आंधी जैसी आवाज में आग जीवों की भांति विभाजित शिष्यों के ऊपर ठहर गई और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर विभिन्न भाषाएं बोलने लगे। शिष्यों को कई भाषाएं बोलते हुए सुनने वाले स्वयं घबरा जाते और आश्चर्यचकित एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं हैं? श्रोताओं, शिष्य जो अपने में शिक्षित नहीं थे, कैसे अचानक विभिन्न भाषाओं के वक्ता बन जाते हैं? वे शिष्य जो यहूदियों के भय से भयभीत थे, कैसे अचानक निडर हो जाते और सबके सामने पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त का साक्ष्य देने लगते हैं? यह और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर का चमत्कार था, जिसे वे अपने चुने हुए विश्वासी भक्तों और अनुयायियों के लिए प्रकट करते हैं। शिष्यों के लिए ऐसा स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा प्रतिज्ञा में पूरी की जाती है, जिन्होंने पिता की ओर से अपने अनुयायियों के लिए एक सहायक भेजने का वचन दिया था। यह वही आत्मा है जो हमें भी अपने जीवन की सारी चीजों को समझने और उनका साक्ष्य देने हेतु मदद करता है। श्रोताओं, यही मानवीय जीवन और ईश्वरीय प्रजा की सच्चाई है, अर्थात जो मुक्तिदाता ईश्वर पर विश्वास करती और उनके प्रति निष्ठावान बने रहती हैं, वे उस सहायक का अनुभव करते जिसे पिता ने हमारे लिए भेजा है। इस तरह ईश्वर पर हमारा विश्वास हमें कुछ नहीं से सब कुछ बनाता है, जिससे हम उनके प्रेम, शांति और आनंद के वाहक बन सकें। संत पौलुस हमारे लिए इसकी चर्चा आज के दूसरे पाठ कुरिन्थियों के नाम अपने दूसरे पत्र में करते हैं। हम में से हर कोई अपने में ईश्वर के विभिन्न वरदानों और कृपाओं से विभूषित किए गए हैं। हम एक होते हुए भी एक नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने अपने आत्मा का पान कराने के द्वारा हमें अपने कार्यों का साक्षी बनाने हेतु नियुक्त किया है। हमारी योग्यताएं और क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं, जो ईश्वर में हमारे अद्वितीय बनाए जाने की बात को व्यक्त करता है। लेकिन आत्मा एक ही है, जो हमें पिता के द्वारा यीशु ख्रिस्त को दिए गए कार्यों को दूसरों के हित और भलाई में पूरा करने को दिया गया है। श्रोताओ, आज का सुसमाचार जिसका श्रवण हमने किया, हमें यीशु ख्रिस्त में मिली प्रेरिताई को स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है। यीशु ने अपने शिष्यों को अपनी शांति प्रदान की, क्योंकि उनके मन और हृदय में घबराहट के भाव भरे थे। उन्होंने उनके ऊपर फूंक कर उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान किया, जो वायु के रूप में अपनी उपस्थिति को हमारे बीच व्यक्त करता है। इस भांति यीशु ने अपने शिष्यों को स्वयं अपनी प्रेरिताई पाप क्षमा की जिम्मेदारी सौंपी, यह कहते हुए, जिस तरह पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। श्रोताओ, यीशु ख्रिस्त हमारे बीच हमारे पापों को क्षमा करने हेतु आए। उन्होंने किसी पर दोष नहीं लगाया और किसी की बुराई नहीं की, बल्कि क्रूस के काट से घोर दुख सहते हुए भी उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की और उनके पापों को क्षमा कर दिया। यह सचमुच में एक कठिन कार्य है, लेकिन यीशु ने स्वयं इसे पूरा करते हुए हमारे लिए एक साक्ष्य दिया है। लेकिन मानवीय जीवन की कटु सच्चाई यह है कि यीशु की इस प्रेरिताई को दुनिया का कोई भी मानव अपनी शक्ति और सामर्थ्य से कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। श्रोताओ, आज दुनिया को क्षमा की अति आवश्यकता है। क्षमा के अभाव में आज ना जाने कितने परिवारों को, समुदायों, नगरों, देश और राष्ट्रों को नष्ट होना पड़ा है। इस टूटेपन के कारण कितने ही आत्माएं नष्ट हो गई हैं। आइए हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें अपने क्षमा की प्रेरिताई का मर्म समझने को मदद करें, जिससे हम अपने को उनके कार्यों के लिए समर्पित करते हुए दुनिया में ख्रिस्त के लिए आत्माओं को बचा सकें।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं दक्षिण इटली के अचेरा शहर में संत पापा लियो 14वें के प्रेरितिक दौरे का संक्षिप्त रिपोर्ट। संत पापा लियो 14वें शनिवार सुबह 8 बजे वाटिकन के हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरे और 45 मिनट की यात्रा कर अर्कोलियो स्पोर्ट्स मैदान पहुंचे। वहां स्थानीय अधिकारियों ने संत पापा का स्वागत किया। अचेरा दक्षिण इटालियन कंपानिया इलाके में एक बहुत ज्यादा खराब इलाके का हिस्सा है, जो गैर कानूनी डंपिंग और जहरीले कचरे को बिना रोक टोक के जलाने की वजह से पर्यावरण की गिरावट से तबाह हो गया है। 65,000 लोगों का यह शहर तथा कथित तेर्रा दई फुओकी आग की जमीन के बीच में है। यह इलाका मौत का त्रिकोण भी कहलाता है, जो पिछले 20 सालों से जहरीली आग से घिरा हुआ है, जो खराब जमीन को जला रही है और एक स्वास्थ्य संकट को जन्म दे रही है। संत पापा कार से माता मरियम के स्वर्गूत ग्रहण महागिरजा घर पहुंचे। वहां एकत्रित धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और विश्वासियों से बात करते हुए संत पापा लियो ने परिवारों, काम करने वालों, युवाओं और नगर अधिकारियों को एक साथ चलने के लिए आमंत्रित किया और हर फैसले में मानव गरिमा को सबसे ऊपर रखते हुए और गहरी नाइंसाफी के सामने हार न मानने के लिए प्रेरित किया। संत पापा ने बार बार कलीसिया की छवि को एक फील्ड हॉस्पिटल के समान कहा, जिसका मकसद धीरज के साथ जख्मों को भरना और रोजाना के छोटे छोटे कामों में लगे रहना है, जिनसे भरोसा वापस आता है। ईमानदार काम, साफ सुथरा राज और एक ऐसी संस्कृति जो जिंदगी को उसकी शुरुआत से लेकर उसके अंत तक बचाती है। संत पापा ने माता पिता और दादा दादी के शांत साहस की तारीफ की, जो आर्थिक तंगी के बीच परिवारों को एक साथ रखते हैं, और उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपने देश को निराशा में न छोड़ें, बल्कि सबकी भलाई के कारीगर बनें। अचेरा और पूरे कंपानिया इलाके के लोग बेरोजगारी, लगातार अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और बाहर जाने वाले प्रवासन से जूझ रहे हैं, जिससे उनके सबसे युवा और सबसे मेहनती नागरिक शहरों से दूर हो रहे हैं। कई परिवार मुश्किल अनुबंध और मौसमी मजदूरी पर गुजारा करते हैं। छोटे व्यापार बढ़ती लागत और अलग अलग निवेश से दबाव में हैं, और जहाँ सेवाएं कम हैं वहाँ नागर समाज को अक्सर आगे आना पड़ता है। इस मामले में संत पापा ने साफ हाथ और साफ दिल की अपील की और नागरिकों से भ्रष्टाचार का सामना करने, सार्वजनिक संसाधनों की जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने और सबसे कमजोर लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की रक्षा करने के लिए अपील की। सुसमाचार से प्रेरणा लेते हुए संत पापा ने एक ऐसा रास्ता सुझाया जो हृदय परिवर्तन को नागरिक दोस्ती से जोड़ता है। गरीबों को पहले रखें, पल्लियों और धर्म प्रांत के संसाधन को मुश्किल में फंसे नागरिकों, बेरोजगारों और बीमारी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए दें। उचित काम करें, युवा व्यवसायिकों का साथ दें, सहकारी और सामाजिक उद्यम को बढ़ावा दें और उन कंपनियों को प्राथमिकता दें जो श्रम अधिकार और वातावरण का सम्मान करती है। संत पापा ने उन पुरोहितों, धर्म बहनों और स्वयं सेवकों को धन्यवाद दिया जो लोगों के संघर्षों में उनके करीब रहते हैं, और उन्होंने उन सरकारी अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। महागिरजाघर में अपना संदेश समाप्त करने के बाद संत पापा पापा मोबाइल में अचेरा शहर की गलियों से आगे बढ़ते हुए कालापारी चौक पहुंचे। कालापारी चौक पर बनाए गए सुंदर स्टेज में संत पापा का स्वागत वहां के महापौर ने किया। इसके बाद संत पापा ने कहा, प्यारे दोस्तों, आज अचेरा में मेरी मौजूदगी का यही खास मतलब है, उस गरिमा और जिम्मेदारी की भावना को पक्का करना और बढ़ावा देना जो हर सच्चे दिल में तब महसूस होती है जब जिंदगी शुरू होती है और तुरंत मौत का खतरा होता है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह शनिवार की सुबह उनके बीच बिताकर और एक बार फिर ऐसे इलाके में आकर खुशी हो रही है जिसकी खूबसूरती को कोई अन्याय मिटा नहीं सकती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, जिंदगी में हम यह समझते हैं कि खूबसूरती जितनी नाजुक होती है
उतनी ही ज्यादा देखभाल और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। संत पापा लियो ने धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, डीकनों, धर्म बहनों और विश्वासियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने विश्व पत्र लाउदातो सी के संदेश और संत पापा फ्रांसिस के लगातार बाहर की ओर देखने, मिशनरी सिनोडल कलीसिया बनने के निमंत्रण को तुरंत अपनाया। संत पापा लियो ने कहा, एक साथ चलना, खुद को अहमियत देने वाली सोच पर काबू पाना, विरोध और धमकियों के बावजूद हिम्मत से भविष्यवाणी करना, यही प्रभु हमसे चाहते हैं और उनकी आत्मा हमें प्रेरित करती है। संत पापा ने जोर देकर कहा, इस क्षेत्र में जीवन मौजूद है जो मौत का विरोध करता है, न्याय मौजूद है जो अन्याय पर विजय पाएगा। संत पापा ने अपील करते हुए कहा, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, हम में से हर कोई जिम्मेदारी लें, हम न्याय चुनें, हम जीवन की सेवा करें। आम भलाई कुछ लोगों के व्यवसाय के फायदों से पहले आती है। उन्होंने कहा, उस तकलीफ की कीमत और वजन हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप नए जन्म के समय की ओर बढ़ रहे हैं जो हटाने या इनकार करने का समय नहीं है, बल्कि नैतिक काम और सक्रिय याद का समय है। संत पापा ने कहा, यह सोचने का समय है जिसकी ओर विश्व पत्र लाउदातो सी ने सभी इंसानों को बुलाया है, हर कोई अपनी जिम्मेदारियों से शुरुआत करें। संत पापा ने उन अगुवाओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने अपने साहसिक प्रतिबद्धता से इस क्षेत्र के बुराइयों की सबसे पहले निंदा की। उन्होंने सभी से कहा, जैसे कोई अपने घर के दरवाजे पर नजर रखता है, वैसे ही दुनिया की सेहत का भी ध्यान रखें और उन तरीकों से जुड़ी ताकत और अमीरी के लालच को नकारें जो धरती, पानी, हवा और इंसानों के साथ रहने को गंदा करते हैं। अपना संबोधन समाप्त करने के बाद संत पापा ने वहां उपस्थित विश्वासियों के साथ मिलकर छोटी प्रार्थना की, उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया और कार से अर्कोलियो स्पोर्ट्स मैदान पहुंचे। वहां स्थानीय अधिकारियों ने संत पापा को विदाई दी और संत पापा करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर से वाटिकन के लिए उड़ान भरे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, हम मानव अपने दैनिक जीवन में ईश्वरीय वरदानों की चाह रखते हैं। इसके लिए हम बड़ी आस्था से ईश्वर के मंदिर, उनके निवास स्थल में उनकी पूजा आराधना करने को जाते हैं, जिससे हमारे हृदय की मनोकामनाएं पूरी हों। इतना ही नहीं, ईश्वरीय आशीषों को पाने के लिए दान पुण्य के कार्य भी हम संपन्न करते हैं, और देखा जाए तो ईश्वर पर हमारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाती है। वे हमें अपने विश्वासी भक्तों को हमारे नेक और भले कार्यों के कारण निश्चित ही अपनी आशीषों और वरदानों से विभूषित करते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम ईश्वरीय वरदानों को किस रूप में ग्रहण करने को तैयार रहते हैं। श्रोताओं, आज माता कलिसिया पेंतेकोस्त का महापर्व मनाती है, जहां हम पिता ईश्वर के द्वारा पुत्र में पवित्र आत्मा को दुनिया में शिष्यों के बीच भेजे जाने की चर्चा सुनते हैं। पेंतेकोस्त महापर्व आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठ हमारे लिए शिष्यों पर पवित्र आत्मा के उतरने और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का जिक्र करते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए स्वयं से पूछें, क्या हमने अपने ऊपर ईश्वर के आत्मा को उतरने का अनुभव किया है? प्रभु का आत्मा हमारे लिए किस रूप में आता है? पवित्र आत्मा हमें विभिन्न तरह के वरदानों से विभूषित करते हैं, अतः हमने उनकी किस कृपा को अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप में अनुभव किया है?
1: उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले, और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में ईश्वर की दिव्य शांति से भर दे, जिसे यीशु हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजते हुए प्रदान करते हैं, जिससे हम उसी शांति को उनके बीच बांट सकें जो अपने जीवन में अशांत और विभिन्न रूपों में बिखरे होने का अनुभव करते हैं। श्रोताओं, प्रेरित चरित्र से लिया गया आज का पहला पाठ शिष्यों के लिए हुए एक अद्भुत चमत्कार का जिक्र करता है। यह हमारे लिए पेंतेकोस्त, उनके ऊपर पवित्र आत्मा के उतरने की चर्चा करता है। अपने स्वर्गारोहण के पूर्व यीशु ने अपने शिष्यों को यरूशलेम से बाहर नहीं जाने का आदेश दिया था, तब तक जब तक उनमें पवित्र आत्मा ना उतरे और उनके द्वारा उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त ना हो। यीशु अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं और अपने शिष्यों के लिए पिता की ओर से पवित्र आत्मा को भेजते हैं, जिसकी प्राप्ति हेतु शिष्यगण अंतिम व्यारी की कोठरी में जमा होकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। अचानक आंधी जैसी आवाज में आग जीवों की भांति विभाजित शिष्यों के ऊपर ठहर गई और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर विभिन्न भाषाएं बोलने लगे। शिष्यों को कई भाषाएं बोलते हुए सुनने वाले स्वयं घबरा जाते और आश्चर्यचकित एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं हैं? श्रोताओं, शिष्य जो अपने में शिक्षित नहीं थे, कैसे अचानक विभिन्न भाषाओं के वक्ता बन जाते हैं? वे शिष्य जो यहूदियों के भय से भयभीत थे, कैसे अचानक निडर हो जाते और सबके सामने पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त का साक्ष्य देने लगते हैं? यह और कुछ नहीं बल्कि ईश्वर का चमत्कार था, जिसे वे अपने चुने हुए विश्वासी भक्तों और अनुयायियों के लिए प्रकट करते हैं। शिष्यों के लिए ऐसा स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा प्रतिज्ञा में पूरी की जाती है, जिन्होंने पिता की ओर से अपने अनुयायियों के लिए एक सहायक भेजने का वचन दिया था। यह वही आत्मा है जो हमें भी अपने जीवन की सारी चीजों को समझने और उनका साक्ष्य देने हेतु मदद करता है। श्रोताओं, यही मानवीय जीवन और ईश्वरीय प्रजा की सच्चाई है, अर्थात जो मुक्तिदाता ईश्वर पर विश्वास करती और उनके प्रति निष्ठावान बने रहती हैं, वे उस सहायक का अनुभव करते जिसे पिता ने हमारे लिए भेजा है। इस तरह ईश्वर पर हमारा विश्वास हमें कुछ नहीं से सब कुछ बनाता है, जिससे हम उनके प्रेम, शांति और आनंद के वाहक बन सकें। संत पौलुस हमारे लिए इसकी चर्चा आज के दूसरे पाठ कुरिन्थियों के नाम अपने दूसरे पत्र में करते हैं। हम में से हर कोई अपने में ईश्वर के विभिन्न वरदानों और कृपाओं से विभूषित किए गए हैं। हम एक होते हुए भी एक नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने अपने आत्मा का पान कराने के द्वारा हमें अपने कार्यों का साक्षी बनाने हेतु नियुक्त किया है। हमारी योग्यताएं और क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं, जो ईश्वर में हमारे अद्वितीय बनाए जाने की बात को व्यक्त करता है। लेकिन आत्मा एक ही है, जो हमें पिता के द्वारा यीशु ख्रिस्त को दिए गए कार्यों को दूसरों के हित और भलाई में पूरा करने को दिया गया है। श्रोताओं, आज का सुसमाचार जिसका श्रवण हमने किया, हमें यीशु ख्रिस्त में मिली प्रेरिताई को स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है। यीशु ने अपने शिष्यों को अपनी शांति प्रदान की, क्योंकि उनके मन और हृदय में घबराहट के भाव भरे थे। उन्होंने उनके ऊपर फूंक कर उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान किया, जो वायु के रूप में अपनी उपस्थिति को हमारे बीच व्यक्त करता है। इस भांति यीशु ने अपने शिष्यों को स्वयं अपनी प्रेरिताई पाप क्षमा की जिम्मेदारी सौंपी, यह कहते हुए, जिस तरह पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। श्रोताओं, यीशु ख्रिस्त हमारे बीच हमारे पापों को क्षमा करने हेतु आए। उन्होंने किसी पर दोष नहीं लगाया और किसी की बुराई नहीं की, बल्कि क्रूस के काट से घोर दुख सहते हुए भी उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की और उनके पापों को क्षमा कर दिया। यह सचमुच में एक कठिन कार्य है, लेकिन यीशु ने स्वयं इसे पूरा करते हुए हमारे लिए एक साक्ष्य दिया है। लेकिन मानवीय जीवन की कटु सच्चाई यह है कि यीशु की इस प्रेरिताई को दुनिया का कोई भी मानव अपनी शक्ति और सामर्थ्य से कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। श्रोताओं, आज दुनिया को क्षमा की अति आवश्यकता है। क्षमा के अभाव में आज ना जाने कितने परिवारों को, समुदायों, नगरों, देश और राष्ट्रों को नष्ट होना पड़ा है। इस टूटेपन के कारण कितनी ही आत्माएं नष्ट हो गई हैं। आइए हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें अपने क्षमा की प्रेरिताई का मर्म समझने को मदद करें, जिससे हम अपने को उनके कार्यों के लिए समर्पित करते हुए दुनिया में ख्रिस्त के लिए आत्माओं को बचा सकें।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं दक्षिण इटली के अचेरा शहर में संत पापा लियो 14वें के प्रेरितिक दौरे का संक्षिप्त रिपोर्ट। संत पापा लियो 14वें शनिवार सुबह 8 बजे वाटिकन के हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरे और 45 मिनट की यात्रा कर अर्कोलियो स्पोर्ट्स मैदान पहुंचे। वहां स्थानीय अधिकारियों ने संत पापा का स्वागत किया। अचेरा दक्षिण इटालियन कंपानिया इलाके में एक बहुत ज्यादा खराब इलाके का हिस्सा है, जो गैर कानूनी डंपिंग और जहरीले कचरे को बिना रोक टोक के जलाने की वजह से पर्यावरण की गिरावट से तबाह हो गया है। 65,000 लोगों का यह शहर तथा कथित तेरा दई फुओकी आग की जमीन के बीच में है। यह इलाका मौत का त्रिकोण भी कहलाता है, जो पिछले 20 सालों से जहरीली आग से घिरा हुआ है, जो खराब जमीन को जला रही है और एक स्वास्थ्य संकट को जन्म दे रही है। संत पापा कार से माता मरियम के स्वर्गूत ग्रहण महागिरजा घर पहुंचे। वहां एकत्रित धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और विश्वासियों से बात करते हुए संत पापा लियो ने परिवारों, काम करने वालों, युवाओं और नगर अधिकारियों को एक साथ चलने के लिए आमंत्रित किया और हर फैसले में मानव गरिमा को सबसे ऊपर रखते हुए और गहरी नाइंसाफी के सामने हार न मानने के लिए प्रेरित किया। संत पापा ने बार बार कलीसिया की छवि को एक फील्ड हॉस्पिटल के समान कहा, जिसका मकसद धीरज के साथ जख्मों को भरना और रोजाना के छोटे छोटे कामों में लगे रहना है, जिनसे भरोसा वापस आता है। ईमानदार काम, साफ सुथरा राज और एक ऐसी संस्कृति जो जिंदगी को उसकी शुरुआत से लेकर उसके अंत तक बचाती है। संत पापा ने माता पिता और दादा दादी के शांत साहस की तारीफ की, जो आर्थिक तंगी के बीच परिवारों को एक साथ रखते हैं, और उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपने देश को निराशा में न छोड़ें, बल्कि सबकी भलाई के कारीगर बनें। अचेरा और पूरे कंपानिया इलाके के लोग बेरोजगारी, लगातार अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और बाहर जाने वाले प्रवासन से जूझ रहे हैं, जिससे उनके सबसे युवा और सबसे मेहनती नागरिक शहरों से दूर हो रहे हैं। कई परिवार मुश्किल अनुबंध और मौसमी मजदूरी पर गुजारा करते हैं। छोटे व्यापार बढ़ती लागत और अलग अलग निवेश से दबाव में हैं, और जहां सेवाएं कम हैं वहां नागर समाज को अक्सर आगे आना पड़ता है। इस मामले में संत पापा ने साफ हाथ और साफ दिल की अपील की और नागरिकों से भ्रष्टाचार का सामना करने, सार्वजनिक संसाधनों की जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने और सबसे कमजोर लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की रक्षा करने के लिए अपील की। सुसमाचार से प्रेरणा लेते हुए संत पापा ने एक ऐसा रास्ता सुझाया जो हृदय परिवर्तन को नागरिक दोस्ती से जोड़ता है। गरीबों को पहले रखें। पल्लियों और धर्म प्रांत के संसाधन को मुश्किल में फंसे नागरिकों, बेरोजगारों और बीमारी से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए दें। उचित काम करें। युवा व्यवसायिकों का साथ दें। सहकारी और सामाजिक उद्यम को बढ़ावा दें और उन कंपनियों को प्राथमिकता दें जो श्रम अधिकार और वातावरण का सम्मान करती है। संत पापा ने उन पुरोहितों, धर्म बहनों और स्वयं सेवकों को धन्यवाद दिया जो लोगों के संघर्षों में उनके करीब रहते हैं, और उन्होंने उन सरकारी अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। महागिरजाघर में अपना संदेश समाप्त करने के बाद संत पापा पापा मोबाइल में अचेरा शहर की गलियों से आगे बढ़ते हुए कालापारी चौक पहुंचे। कालापारी चौक पर बनाए गए सुंदर स्टेज में संत पापा का स्वागत वहां के महापौर ने किया। इसके बाद संत पापा ने कहा, प्यारे दोस्तों, आज अचेरा में मेरी मौजूदगी का यही खास मतलब है उस गरिमा और जिम्मेदारी की भावना को पक्का करना और बढ़ावा देना जो हर सच्चे दिल में तब महसूस होती है जब जिंदगी शुरू होती है और तुरंत मौत का खतरा होता है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह शनिवार की सुबह उनके बीच बिताकर और एक बार फिर ऐसे इलाके में आकर खुशी हो रही है जिसकी खूबसूरती को कोई अन्याय मिटा नहीं सकती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, जिंदगी में हम यह समझते हैं कि खूबसूरती जितनी नाजुक होती है
उतनी ही ज्यादा देखभाल और जिम्मेदारी की जरूरत होती है। संत पापा लियो ने धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, डीकनों, धर्म बहनों और विश्वासियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने विश्व पत्र लाउदातो सी के संदेश और संत पापा फ्रांसिस के लगातार बाहर की ओर देखने, मिशनरी सिनोडल कलीसिया बनने के निमंत्रण को तुरंत अपनाया। संत पापा लियो ने कहा, एक साथ चलना, खुद को अहमियत देने वाली सोच पर काबू पाना, विरोध और धमकियों के बावजूद हिम्मत से भविष्यवाणी करना, यही प्रभु हमसे चाहते हैं और उनकी आत्मा हमें प्रेरित करती है। संत पापा ने जोर देकर कहा, इस क्षेत्र में जीवन मौजूद है जो मौत का विरोध करता है, न्याय मौजूद है जो अन्याय पर विजय पाएगा। संत पापा ने अपील करते हुए कहा, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, हम में से हर कोई जिम्मेदारी लें, हम न्याय चुनें, हम जीवन की सेवा करें। आम भलाई कुछ लोगों के व्यवसाय के फायदों से पहले आती है। उन्होंने कहा, उस तकलीफ की कीमत और वजन हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप नए जन्म के समय की ओर बढ़ रहे हैं जो हटाने या इनकार करने का समय नहीं है, बल्कि नैतिक काम और सक्रिय याद का समय है। संत पापा ने कहा, यह सोचने का समय है जिसकी ओर विश्व पत्र लाउदातो सी ने सभी इंसानों को बुलाया है, हर कोई अपनी जिम्मेदारियों से शुरुआत करें। संत पापा ने उन अगुवाओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने अपने साहसिक प्रतिबद्धता से इस क्षेत्र के बुराइयों की सबसे पहले निंदा की। उन्होंने सभी से कहा, जैसे कोई अपने घर के दरवाजे पर नजर रखता है, वैसे ही दुनिया की सेहत का भी ध्यान रखें और उन तरीकों से जुड़ी ताकत और अमीरी के लालच को नकारें जो धरती, पानी, हवा और इंसानों के साथ रहने को गंदा करते हैं। अपना संबोधन समाप्त करने के बाद संत पापा ने वहां उपस्थित विश्वासियों के साथ मिलकर छोटी प्रार्थना की, उन्हें अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया और कार से अर्कोलियो स्पोर्ट्स मैदान पहुंचे। वहां स्थानीय अधिकारियों ने संत पापा को विदाई दी और संत पापा करीब 12 बजे हेलीकॉप्टर से वाटिकन के लिए उड़ान भरे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।